0: Anna en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai to.
2: Aziz dosto, Hindustan ki azadi ki salgirah par मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते हैं, ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

शीशे का पत्थर पे इसको मत फेंको। देखो जी देखो एक बार इस तरफ देखो, ये दिल बना है शीशे का पत्थर पे इसको मत फेंको।

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीपना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।

एक बार नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहते हैं और एक तोता उस अमर कथा को सुनता रहता है और बीच में हुंकारे भरता रहता है। भोले बाबा देखते हैं तो पार्वती माँ की आंख लगी हुई है, उन्हें गहरी नींद आई हुई है। भोलेनाथ सोचते हैं कि हुंकारे कौन भर रहा था। भगवान शिव ने एक तोते को उड़ते हुए तभी देखा। उन्हें समझते देर न लगी कि अमर कथा यही सुन रहा था। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और तोता बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए सूक्ष्मतम रूप बनाकर सत्यवती के गर्भ में चला जाता है। वही तोता सुखदेव मुनि कहलाए, जो आज भी अमर है। तो भक्तों सुनते हैं भोले बाबा।

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: एक बार एक भक्त शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के लिए जाता है और जैसे ही जल चढ़ाने लगता है उसकी नज़र ऊपर लगे सोने के घंटे पर पड़ती है तो उस भक्त की नीयत बदल जाती है। वो सोचता है कि क्यों ना ये सोने का घंटा मुझे मिल जाए तो बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो वो शिवलिंग पर चढ़कर घंटा उतारने लगता है। भोले भंडारी उसकी भक्ति को देखकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि लोग तो फल और फूल मुझ पर चढ़ाते हैं, तुमने तो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। तो भोलेनाथ उस भक्त को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वो भक्त उस सोने के घंटे को ही मांग लेता है और भोलेनाथ खुशी खुशी उसे दे देते हैं। तो आइए भोले भंडारी का ये भजन सुनते हैं।

Ujala. Ujala Lare heeft de greatest voices of Bollywood. Mumbai Bees gezet. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barenwitte Krega, concert Aafkewaansteer. Met 5 prachtige, krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadin, Nizam Wagdezijn Kesar, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Oud doorpas is taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket baakje de geheer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया है बिना कोटरावा तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाले हैं सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रहो तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

एंथाड़े रहियो कनिका कपूर के आवाज में आप इस गीत को सुने। और सुनने वालों, उजाला रेडियो कतार का नंबर है 020-409-0807। बेलन अलीन तेदस कंतोर उरन तू जाने है।

कनिका कपूर की आवाज में गीत को आप सुने, अनु जोनिता गांधी मैत नकाश अजीज़।

मेरा दिल का टेलीफोन करता है रिंग रिंग रिंग रिंग, जुनिता गांधी एंड नकाश से आप सुनिए। उजाला रेडियो है ये,

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

बत्तियां बुझा दो और थोड़ी सी पिला दो, अंधेरा में जो होगा सुबह उसको भुला दो। आजकल के गाने ऐसे बनते हैं, मेरा क्या कसूर इसमें यार। हम तो गाना के टाइटल आपको देते हैं बस, और सुना देते हैं गाना।

किन्ना सोना तनु रब ने बनाया, जी करे तनु देखता रहूं। जुबिन नौतियाल से आप सुने उजाला रेडियो है, कुछ इन दिनों के गीतों के साथ। और हम जानी ला कोई के मोई लगे है, कोई के ना मोई लगे है।

दिल चोरी साड़ा हो गया दिल कड़िए की कड़िए या यो यो हनी सिंह एंड सिमर कौर से आप सुने उजाला रेडियो है ये नॉक स्टेज या

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कुदरत का करिश्मा, एक दूसरे से मिलना, दुनिया की जरसमी पर किस्मत को आसमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज़ ना भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, फ्राइडाग 11 सितंबर 2026। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहदिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:11। गुड मॉर्निंग, वेलकम, यू आर उजाला रेडियो।

यहाँ पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए। दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से। आप सभी सुनने वालों को मैं खिदमत करने वाला हूँ। मैं हूँ सुभाष और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है वहां तक आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। चाहे आप अपने काम पर प्रोग्राम को सुनते होंगे, वर्कशॉप आओ, या तो अभी आप बिस्तर में लेटे हुए हैं। चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन के साथ। प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं और आप लोग सुनेंगे दुर्गा चालीसा अनुराधा पौलवाल जी के आवाज में। ये शानदार सा भजन जो आप लोग सुनेंगे।

इस तरह से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अनुराधा पौलवल जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो।

अल्लाह की तुमसे लगन साथी कभी छूटे ना, आई तरह से लता एन करोड़ का दिल चराना वाला हार्ट मिले स्माइटी मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे और आप लोग वहां पर फोन कर सकते हैं। फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं, या तो आप ईमेल भेजाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। बस याद रखना, सुबह में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उजाला रेडियो का दफ्तर खुला रहेगा, आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। करीबन 25 मिनट व्यतीत हो चुका है, 9:25 ओवर 9। गुड मॉर्निंग,

वेल, कितना मोई, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने आई बोई। शुक्रवार का प्रोग्राम, वीकेंड का प्रोग्राम, यू आर उजाला रेडियो का। और देखा जाए लीना रामेश्वर इसके देश शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोर्ख।

नीली नीली घटा। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, खास करके अश एंड करोड़ का दिल चुराने वाला हार्ट मिलियस माइटी मुकेश एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और आज शुक्रवार का प्रोग्राम, वीकेंड का प्रोग्राम एंड आज का बनाओ कोई बात खाओ फंडा कोकन यार ऐसा मौसम में खाली लेकर लेकर खाए मन करे खाए के। वंत एक शिशवाल हम बताए जिकुल वेरवा बपाल करे है कि आज का बनाओ कोई का खाओ खोई। अगर आप लोग जान गए हुई है तो आप लोग को मुझे ऐप कर सके हैं और यू आर का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर 020-363-0808।

0: अरे यार मुझको तेरा प्यार चाहिए,
1: इस दिल को उम्र भर बस तेरा ही साथ चाहिए।
0: इस तरह से ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और बाहर का मौसम आप लोग से बता दें कि बारिश का मौसम है, छिसिर मिसिर पानी बरसे है। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो हमारे पास ही रहिए,

दिल तेरी दिल की दुआ चाहिए, आयुष सरोज से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। करीबन देखा जाए 4 मिनट बाकी रहा 10 बजे में फिर मिलते फुर्तीन। और इतरक शहर में जहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं और भाई राजेश बनारसी खुद मूर्ख, तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं यार। और मोई सपना काम हुआ करिए यार, अगर आप लोग घर पर चाय या तो कॉफी बैठकर पीते होंगे, या तो खेम पर तेई बनाए की वेरो बैठकर पीते होंगे, या तो ऑन बैज करते होंगे, स्वादिष्ट ऑन बैज कीजिए।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और आज शुक्रवार 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं खुदा मोर खाल माओ आप सभी को शुभ दिन और फैन वीकेंड तो खमेंस हमारे तरफ से सभी को शुभ वीकेंड वीकेंड की जय हो जो भी वीकेंड में करिए तो जाने हैं प्यार से दुलार से करिए नहीं तो ना करिए बेंच आनंद कोकन कोक सालमा चाहे जो से पकाइए एंड मोई से खाइए और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए संद्रा भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख और

चांदनी रात में तेरा ख्याल जो आता है, आयुषरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे और खुद मूर्ख प्यार के साथ गाना पेशा।

साथी चाहिए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे, हमारे प्यारे सुने वालों, युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस गीत को मांग करने वाले है देखा जाए फेंसर पोल्डर में, जहां पर इस वक्त एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं

0: मुझे तू बता अब कहां मैं तुझे मिलूं। अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी बैठ करके सुन रहे हैं, और खास करके देखा जाए सुतमेर शहर में आसमी भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे खुदा मूर्ख। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ। और एक और रसप अंदर आए रहेगा, और एकदम बेलशहर से दूषी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, वो बनाएगा आज बड़का खरनाल मसाला में खूब तीता तीता, आई बॉय लेकर और कोक सलमाल
1: ठहरती है,
0: और क्रोइट नाखल के चाय बैठ कर पिए है, इसक लेकर। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए आसमी ये

वेल यार तेरे बिना अभी क्या जीना। आई सरो से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों।

बस यार एक तेरा साथी चाहिए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आज शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। ए खुद मोर खलमाल, चाहे जो ऊंची आप लोग करते होंगे, वेल यू आर के साथ

और देखे जाए देन वो शहर में जहां पर इस वक्त अनूप महाबाली भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे। ए खुद मोरख और चलिए गाना तुम्हारे नाम अनूप

0: बोलो सोना, कल तक बहुत हीरो बनत रहा ना, अब का हुआ? एक नजरिया में चुप समझदार किद, नैना से मारा,
1: आरे आरे।
0: हंस के पुकारा,
1: सोना रे सोना,
0: दिलवा बेचारा
1: ले गेला, ले गेला।
2: और दिलवा बेचारा ले गए ले ना, अरे हम तो से बोली तो हम तो से बतावत रही, मैं तुम्हार बतिया ना सुन ले। और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, और देखा जाए लेमन शहर में, और इस वक्त देखा जाए पवन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुन रहे, यही खुद मोर खाल माओ। युवार उजाला रेडियो 13 मिनट बाकी रहा 11 बजने में। अरे यार मनवा मोरा

अरे यार मन में डोले रे जब तू मेरा सामने आवे रे, अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और बैन वीकेंड है यार, हम तो लोग से बता देली कि वीकेंड में क्या हुए है। मई साल वीकेंड में हम लोग मोई मोई खाना बनाए लो, यवे लेकर लेकर खाना चटकीले चटकीले लुटपुटारे तीता तीता मसाला में। और दिलवा बोले दिल मेरा

वाओ वेल यार, मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक यार, एंड गुड़िया तेरी याद में मारा, अब तू जाने क्या हो सकता है यार, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अरे यार चलन देना। आई बोल

और हमारे प्यारे सुनने वालों बैना बैना एलोफिर ठीक के 11 बजने वाले हैं और ना द ब्रेक ना द रिक्लाम यार, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो है जबल।

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने यार, और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, और देखा जाए आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को अपन ओतो में वेल फरीदा कहती बा, और आनंद जग्गू ये गाना तुम्हारे ना भाई जी

करीबन 13 मिनट व्यतीत हो चुकल है 11:13 और 12 बजे तक आप लोग के साथ हम रहेंगे आखिरी भाग या मैं लास्ट यार अब कितना हल्ली। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे राना माताई के आवाज में वादिया मेरा।

वादिया मेरा दामन औजरा से राना मताई के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों। इट्स फ्राइडे, इट्स बाय ना वीकेंड यार।

एंड कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना। वेल एगो इतना विशाल रेसिपी अंदर आल हैगा कटहर। वेल कटहर कटहर के तरकारी में के इन कोक स्मेलक या आशमी लेकर होर कटहर के तरकारी फोर तेज एगो रेसिपी अंदर आल हैगा कटहर के तरकारी में के इन कोक स्मेलक जबल किसना

कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही विशाल गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड अब की बार वी कैन थे यार जबो, हियर वी गो, यू आर उजाला रेडियो

तेरा मस्ताना एंड हमसे कोई भूल ना हो जाए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुने वालों, एक और रेसेप अंदर आए है, वेल मोई रेसेप नतुलक। गुडमॉर्गन, वे एटन फंदाग मिक्स डाउन मेट कलौजी गफुल्ड मेट ओली सार्डिन गबाकन विस। ग्रुचेस गीता आउट सुतमेर। वेल गीता दंकेवेल। आओ चलिए गीता, ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं। आई बॉय लेकर कलौजी गफुल्ड मेट ओली सार्डिन जबेल आई बॉय। वात एन मोई रेसेप और लेकर, eet u smakelijk voor strakjes.

इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एक मैं और एक तू आई बॉय, कितना विशाल कितना मोई गाना, एंड यू आर उजाला रेडियो है, हम सुरम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। एंड वीकेंड तो में चाहे जोन सी करिए, वेल हम हरदम बोली लो, अब बोलते रहो प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए, वेल बार बार देखो एंड हजार बार देखो यार, हियर वी गो।

वेल यार, बार बार देखो एंड हजार बार देखो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अमसरम, और उसमें हमारे समदी भाई जी ए बोले बैना वीकेंड, या वेल दिस बैना वीकेंड यार, चाहे जो ची भी कहते हो हमें करिए, और चलिए गाना आप लोग के नाम परिवार सौदागर के लिए।

वल तारीफ करूं क्या तुमने जिसने तुम्हें बनाया यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने अम्सरम से, तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। खुद मोरखे

वेल हमने तुमको देखा एंड ऐसे वेल कितना मोल आई बॉय यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनो लो करीबन 18 मिनट बाकी रहा 12 बजने में 18 मिनट फॉर 12 वेल थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ यार एंड चलिए अब की बार पंकज उदास एंड साधना सरगम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

कभी आंसू कभी खुशबू नखमा बनकर, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और भी खास करके पंकज उदास एंड साधना सरगम जी की आवाज में।

ओ मेरे हमराही, अवसरों से देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 4 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। यबल आई बॉय

वल तेरी उम्र है 16 साल एंड सजनिया बहिया में बहिया डाल। और हमारे प्यारे सुनने वालों, यही आशा कि जिस तरह से प्रोग्राम को आज हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जरूर से पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। यहीं पर हम आप लोग को छोड़ के जा रहे हैं, यहीं पर हम आप लोग से मिलेंगे।

और तुम लोग अपना वीकेंड तो तुम लोग मौज से बिताइए, और ये शुक्रवार का शाम और रात्रि तुम लोग का आप लोग मौज से बिताइए, मौज से पकाइए, मौज से खाइए। एंड इधर इन जो रिसेप्शन में पढ़ाई से थैंक यू वेल एच सुमाक रकल माओ विशाल खेमाई के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे हैं, हम आप लोग से इजाजत चाहेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुबह शिव गोविंद। फैन वीकेंड अलमाओ स्वाई स्वाई बाय बाय।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की मां पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी आम्स्टरडम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू की विधवा थी और लोग इन्हें लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टरडम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की मां पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी आम्स्टरडम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदा खानस्तांद हालफ फिर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू के दुख में शामिल है।

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी ताड़ आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिन कांतोर यूरन 020 409 0807।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है
3: होठों पे सच्चाई रहती है
4: मुकेश जो आप सबके प्रिय गायक थे मेरे बड़े भैया थे मुकेश भैया एक महान कलाकार थे एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

0: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।
1: हाँ? क्या कहा?

उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत। ये था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी उजाला रेडियो पर, आप जानते ही हैं।

नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनतेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: रिदम में रहिए उजाला रेडियो के साथ।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। आम्स्टर्डम ओस्ट फ्रू लिक्सराज से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी आम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। आम्स्टर्डम फ्रोलिक्सराज से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त ख्यार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू की आजी आम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी की दाह क्रिया आने वाले इतवार दिन में 3:30 बजे जोंदा खान स्टांद हालफीर किए जाएंगे। वैस्कार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेर वैख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

करो कि जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए। तो अगला गीत सुनिए।

0: जी अरारे झूमे ऐसे जैसे बलमाना चिमोर, सावन का महीना है और पवन करे शोर। लता जी मुकेश जी के साथ फिल्म मिलन का गीत।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

शाह भोसले और मोहम्मद रफी से आप सुने फिल्म कुर्बानी का गीत कि क्या देखते हो। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और हम लोगों का तार का नंबर दफ्तर के समय तैदंस कांतोर उरन 020 409 0807।

होता है ये जिंदगी के साथ लता जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। फिल्म नूरी का गीत पेश है

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाइए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।